साथ ना जाए सा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोई मन मार्ग ठाक न पाए मन पथ संपर्कट जाए मन माग न चलाए पंथ मन धर्म सिति संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख द्वार मन परवार साधार मन तरह तारी गुरसिख मन नानक पवे ना भेखो ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगह मान पंचे सो हैं दर राजान पंचा का गुर इक ध्यान जे को कह कर विचार करते का करण नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रख्या जिन सूत जे को बुझा होवे सचियार तबले उपर किता भार धरती ओर परे होर होर तस्ते पार तलै कमजोर जी जात रंगा के नाव सब ना लिखिया बड़ी कला में लेखा लग जाने कोई लेखा लिखिया किता हुए किता तान सवाले उरु किती दा जाने कौन को किता साओ एको कुवाओ तस्ते हो लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारण जावे एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलाम निरंकार संख जाप संख भाओ संख पूजा संख तप ताओ असं ग्रंथ मुख वेद पाठ संख जोग मन रह उदास संख भगत गुण ज्ञान विचार संख सती संख दा उतार असंख सूरमा पख सार संख मोल बुलाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारण जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार संख मूर्ख अंध घोर संख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर संख गल वढ हत्या कमाए संख पापी पाप कर जाए संख कूड़ियार कूड़े फिराए संख मलेश मल पखाए असंख निंदक सर करै पार नानक नीच कह विचार वारण जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव संख थाव गम गम संख लो संख है सरपार अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखन बोलन बानू अखरा सर संजोग बखानू जिने लिखित सुर नाही जे फुरमाए ते ते पाए जेता कीता तेता नाऊ गिरनावै नाही को थाव कुदरत कवन कहा विचार वारण जावै एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परियात पैरता दे पानी धोता उतरसके मूत पलीती कापड़ होए दे साबून लिया तोए परिया मत पापा कहे संग तो पहनावै कह रंग अपनी पापी आखन नाए कर कर करना लिख लै जाओ आपे बी जापे खाहो नानक हुकमी आव जाहो तीर तप दया दा दान जे को पावै तलका मान सुनिया मन्या मन कीता भाव अंतरगा तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कावन कवन थित कवन वार कवन सिरती माओ कवन जित हो आकार वेल न पाई पंडती जेहो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दियां जे लिखन ले कुरान थतवार न जोगी जान रतमाहु न कोई जा करता सृष्टि कहु साजे आपे जाने सोई कव कर आखा कव सा लाई क्यों वरनी कव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई किता जा का होवै नानक जी को आपो जाने अगै गया ना सो है पाताला पाताला को आगा सागा सोड़ को भात थकी वेद कहन कबात सहसु अठारह कणक ते बांसलुक धात लिखा हुए तां लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा याकी आपे जाने आप सालाहे तिसुरत न पाई नदियां तै वाह पवै समुंदर जाने समुद साह सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुर नाओं जित मन होना विसराए अंत न सिफती कहन नानत अंत न करण दिन नानत अंत न वेखण सुनन ना अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंध कारण किते बल लाहे ताके अंत न पाए जाए अंत न जाने कोई बहुता कहिए बहुता होए बड़ा साहेब उच्चा थाउ उच्ची उपर उच्चा नाउ ए बड़ उच्चा होवे कोई ते सुचे को जाने सोए जे बड़ाप जाने आप आपू नानक नदरी करमी दात बहुता करम लिखिया न जाए वड्डा दाता तलना तमाए किते मंगे जो दो पार कित्या गणत नहीं विचार किते खाप तटाए विकार किते लै लै मुकर पाए किते मूर्ख आई काए कित्या दुख पू सद मारे पिदा तेरी दा तार
ਬੰਦ ਗਲਾਸੀ ਪਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੱਖ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਾਣੈ, ਜੀਤੀਆਂ ਮੁਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ।

श्री भगवान को भेद ना पायो। कऊ बतान को पूजत हैं पास, कऊ मृतान को पूजन थायो। कूर क्रिया और जो सभी जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। एको अंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दशमी कवि वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हादर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रह हमारा अपना, जान करो प्रत पार। हमरे दुष्ट सभा तुम काबू, आपा दमोय बचाओ। सुखी वसै मोर परिवार, सुख सुख सबै कर तारा। मोर चनज कर दय करिए, ये सब बैरन को वास संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊ, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेख सिख हमारे तारी है, चुन चुन शत्र हमारे मारिए। आप आदम जय भरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जु करियो रच्छा। राख लो मराख नारे, साहिब संसाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतरदस कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जु अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जबन काल जोगी शब कियो, बेदराय ब्रह्मा जो थियो। जबन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जबन काल सब जगत बनायो, देव दैन चछनो पजायो। आदान्ते कह अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तसी को हमारी, सकल प्रजा जने आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पल मोह बद कियो। कटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान, घट घट के पट पट के जाने। जावत कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा। जबा कर कर तो कबू, तुम तो मिल दे तर सब। जेते बदन सरट सब तारा, पापनी भूजो चारा। तुम सब ईते रहत निरालम, जानत भेद भेदार आलम। निरंकार निरवकार निर्लाबाद, नीलनाद सब। ताका मूड चारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहर न मानत, महा मूड कश भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत न पैव। आप अपनी बध है जीती, वरणत पैन पैन तो थेती। तुमरा लखन जाए पसारा, के बस जा प्रथम संसार। आई कह रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कहीं पुपा। अंड जेर से तज की नुतपज खान, बहुर रच दीनी। कहू फुल राजा बैठा, कहू सिमट पैव शंकरिया कैठा। सिगरी सिर दिखाए चंब, वा जुगा स्वरूप जंब। अब रचा मेरी तुम करो, सिखो बारा सिख संग रहो। दुष्ट ते उठ बद उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जस तो तब शरणी परी, तन के दोष्ट दुख तो हुआ मरी। पुरख जवन पग परी तिहारे, तन के तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार तय, ताके काल निकट न आय। अच्छा विदाय सब काला, दुष्ट रिष्ट रिंदत काला। कृपा दृष्टन जाय निहार हो, दाके दाव तनक मोहर हो। रह दो सैद कर्म सब होई, दुष्ट छाछ वह सकै ना कोई। एक बार जंत में संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जैन नर नाम तिहारो, कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आफा दल हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आफा दल हो बारी। सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दुख ते लिहो बचाई। राम कली महला तीजा, आनंद को अंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद पाया, मेरी माए सतगुरु मैं पाया।

साहिब जी जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन केरा जित मिलया चूके सब सोग संतापे अमै दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै

अमृत का हर अमृत हर का नाव मन तन हृदय सिमर हर आठ पैर गुण गाव उपदेश सुनो तुम सिर सिखो सच्चा हे सुभाओ जन पदार्थ सफल होए मन में लायो पहाओ सुख सहजन हंद कणा प्रभ जपते हैं दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे दरगह पाइये थाओ महला पांजवां नानक नाम ते आइये गुर पूरा मत दे पाणे जप तप संजमो पाणे ही कड ले पाणे जोग पवाइये पाणे बक्स करे पाणे दुख सुख भोगिये पाणे कर्म करे पाणे मिट्टी साजके पाणे जोत तरे पाणे भोग पगाइंदा पाणे मने करे पाणे नरक सुर्ग उतार पाणे तरन परे पाणे ही तिस भगती लाए नानक बिरले हे पौड़े बड़ियाई सच्चे नाम के हूँ जीवा सुन सुने पशु प्रेत ज्ञान उदारे एक कने दिन सरैन तेरा नाऊ सदा सद जापी है तृष्णा भूख बिकराल नाए तेरे तरापी है रोग सोग दुख बंजे जिस नाऊ मन बसे तिसे प्राप्त लाल जो गुर सबदी रसे खंड ब्रह्मांड बेअंत उदाहरण हारिया तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया श्लोक महला पांजवां मित्र प्यारा नानक जी मैं छड गवाया रंग सुंबे फुले तो सज्जन की मैं कीम न पाउंदी हूं तो जो बिन अंड न लेंदे महला पांजवां सास

हम किस हूँ के नाए जिन रचन रचाया तिस ही माहे समाहे पौड़े सफल्यो बिरख सुहावड़ा हर सफल अमृता मन लोचे उन मिलन को क्यों बंजे किता बरना चेना बारना ओ अगम जिता ओ प्यारा जी का जो खोले पिता सेवा करी तो साड़ियां मैं दस्यो मिता कुरबाणी वंजा बारने बल्ले बल किता दसन संत प्यारिया सुनो लाए चिता जिस लिखिया नानक दास तिस नाउ अमृत सतगुर दिता सलोक महला पांजवा कबीर धरती साधकी तस्कर वैसे गाहे धरती पारना व्यापे उनको लाहू लाहे महला पांजवा कबीर चावल कारने तुको महली लाए संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राये पौड़ी आपे ही बड़ परवार आपे कातिया अपनी कीमत आप आपे ही जातिया सब कुछ आपे आप पुन्या अपना कीता आप भरन्या धन सो तेरा थान जिथे तू बुठा धन सो तेरे भगत जिने सच तू डिठा जिसनू तेरी दया सलाहे सोई तुद जिस गुर पेटे नानक निर्मल सोई सोध सलोक महला पांजवा फरीदा भूमर गावले मज वसूला भाग जो नर पीरन वाजिया तिना अंचना लाग महला पांजवा फरीदा अमर सुहावड़ी संग सबंदड़ी दे बिरले कई पायन जिना प्यारे ने पौड़ी जप तप संजम दया धर्म जिस देही सो पाए जिस देही सो पाए जिस बजाए अगन आप सो नाम ते आए अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए साध संगत के आसरे तो प्रभ स्यो रंग लाए अवगण काट मुख उजला हर नाम तराए जन्म मरन पौ कटियन फिर जो ना पाए अंध कूप ते काडियन लड़ा पिछड़ पढ़ाए नानक बख्श मलायन रखे गल लाए सलोक महला पांजवा महाबत जिस खदाए दी रत्ता रंग चलूला नानक बिरले पाई है तिस जन की मना मूला महला पांजवा अंदर बिद्दा सच नाए बाहर पी सच डिठोमा नानक रवे अंदर बिद्दा सच नाए बाहर पी सच डिठोमा नानक रवे हम बथाए बन त्रैन त्रै पवन रोमा पौड़ी आपे की तो रचना आपे ही रत्या आपे हुए एक आपे बा पत्या

पोता परवाना जिन बासक नेत्र है कत्या कर नेही तान जिन समुंद बिरोलिया कर मेर मताना चौदे रतन निकालियन की तो चनाना कोड़ा की तो सहजदा जत कियो पलाना तनख चढ़ायो सतदा जस हंदा बाण कल विच तू अधारसा चढ़िया रह पाना सत्तों खेत जमायो सत्तों शाबान नित रसोई तेरी है क्यो मैदा खाना चारे कुंडा सुजियुस मन मह शब्द प्रभान आवागौन निभारियो कर नदर साना।

सा जा तू सुगण स जाना दान जे सतगुर भाव से सो सत्य दान नानक हंदा छतर सिर मत हैराना सो टिक्का सो बहना सोई देवान प्यो दादे जे वा पोतरा परवान तन तन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी हुई करामात अब सिरजन हारे तारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह तोल तू तेरा अंत न पारा भारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया लभ लुभ काम क्रोध मो मार कड्डे तुद सर पर भारिया तन सो तेरा थान है सच तेरा पैक पैस कारिया नानक तू लैना तू ही गुर अमर तू बिचारिया गुर डिठा तमन सधारिया चारे जागे चौं जुगे पचायन आपे हुआ अपने आप साजन आपे ही थम खलोआ आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हुआ सब मत आवन जावनी आपे ही नबा नरोआ तख्त बैठा अर्जन गुरु सतगुर का के बेच दोआ अवगणो ते अथवणो चौं चंकी कियन लोआ जिनी गुरु न सेवियो मन मुखा पे मोआ दूनी चूनी करा।

प्रसाद काया कलानन लाहिन मेलो गुर का शब्द गुर की नरे तिसना काम क्रोध मद मस्तर काट काट कस दीन रे कोई है सरे संत सहज सुख अंतर जाको जप तप देहो।

मुद्रा मदक सहज तो न लागे, सुख मन पौचन हारी रे। तीर्थ भरत नेम सुध संजम, रब सस गहने देओ रे। सुरत प्यार सुधा रस अमृत, एह महारस पियो रे। निजर तार चुए अत निर्मल, एह रस मनुआ रातो रे। कहे कबीर सगले मद छूछे, एह महारस साचो रे। गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर कर मऊआ, पौ पाठी मन तारा। सुख मन नारी सहज समानी, पीवे पीवन हारा। ओदो मेरा मन बत बारा, उन्मद चड्डा मदन रस चाकिया। त्रै पवन पिया उजे हारा राव, दोय पर जोर साई पाठी। पियो महारस भारी, काम क्रोध।

जलेता छूट गए संसारे, प्रगट प्रकाश ज्ञान गुरम गमत, सतगुर ते सुध पाए, दास कबीर दास मद माता, उचक ना कबू जाए। तू मेरो मेर पर्वत सुवामी, उठ गई मैं तेरी, ना तुझ डोलो हम गिरते, रख ली नी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही तू है, हम तो प्रसाद सुखी सद ही रहाओ। तेरे भरोस तोरे भरोसे मगर बस्यो, मेरे तन की तपत बुझाई, पहले दर्शन मगर पायो, फुनकासी बसे आए। जैसा मगर तैसी कासी, हम एक कर जानी, हम निर्धन त्यों ये तन पाया, मरते बूट गमाने, करे गमान चुभे तिसूला, को काडन को नाही, अजय सुचोब को बिबलव बिलाते, नरके कोर पचाहे। कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा, संतन दूहू राधे, हम काहू की कान न कटते, आपे अपने गुर पर सादे। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक पहे है, कोई न सके पछाने। संता मानो दूता डानो, एक कटवारी मेरी, दिन सरैन तेरे पाओ पलोसो, केस चवर कर फेरे। हम कुकर तेरे दरबार, पहुके आगे बदन पसार रहा, पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया न जा मिटिया ना।

जाई। साधु होए सो भक्त पछाणे, हर ले खजाने पाई। कोठड़े में कोठड़ी परम कोटि विचार, गुरदीनी बस्त कबीर को लेहो बस्त सुमारा। कबीर दे संसार को लीनी, जिस मस्तक पहाग अमृत राजन चा पाया। थिर का थिर ता का सुहागा, जे मुख बीद गैतरी निकसे। सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे, जाके पाए जगत सब लागे। सो क्यों पंडित हर ना कहे, काहे मेरे ब्राह्मण हरक ना कहे। राम न भूले पांडे दुजक भरे, रहा आपन ऊच नीच पर कर पूजन। हटे कर्म कर उदक भरे, चौदस ममावस रच रच मांगे। हर दीपक के कूप परे, तू ब्राह्मण मैं कासिक जुल्हा। मोहे तोहे बराबरी कैसे के बने, हमरे राम नाम कह उबरे। भेद परोसे पांडे डूब मरे, तारबर एक अनंत डार साखा। पहुप पत्र रस भरिया, ए अमृत की बाड़ी है रे। तिन पहर पूरे करिया, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। अंतर जोत राम पर गासा, गुरमुख बिरले जानी राम। पवरे एक पहुप रस भीदा, बाहर ले और तारिया। सर मध्य पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सोने कबीरबा उपजया, धरती जलहर सोखिया। कहे कबीर हूं ता का सेवक, जिन एहो बिरबा देखिया। मुंदरा मून दिया कर चोली, पत्र का करो विचार रे। खिंता एव तन सियो अपना, राम करो बिधार रे। ऐसा जोग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी। राव बुद्ध विभूत चढ़ावो अपनी, संगी सुरत मिलाए। कर विराग फिरो तन नगरी, मन की किंगरी बजाए। पंच तत् लै हृदय राखो, रहे निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनो रे संतो, धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवनिद तारन तारन चिता मन, एक निमख न एह मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया। तिसकी पाओ भक्त नहीं साधी, राव पर तन पर तन पर ती निंदा। पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन बुन। एव पर संग न टूटे, जय कर कथा होत हर संतन। एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे। तिन संग सदा बसेरा, काम क्रोध माया मद मस्तर। ए संपे मोह माही, दया धर्म अर गुर की सेवा। ए सपनांतर नाही, दीन दयाल कृपाल दमोदर। भगत बछल पै हारे, कहत कबीर पीर जन राखो। हर सेवा करो तुम्हारे, जय सिमरन होए मुक्त द्वार। जाहे बिकंट नहीं संसारा, निरपो के कर जावे तूरा। अनहद बजे सदा पर पूरा, ऐसा सिमरन कर मन माहे। बिन सिमरन मुक्त कत नाहे, राहु जय सिमरन नाही ननकार। मुक्त करे उतरे बापारा, नमस्कार कर हृदय माहे। फिर तेरा अवन नाहे, जय सिमरन करे तू केल। दीपक बांध तरियो बिन तेला, सो दीपक अमरक संसार। काम क्रोध बिख कडीले मारा, जय सिमरन तेरी गत होए। सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राख उतारा। गुर प्रसादी उतरे पारा, जय सिमरन नाही तोय कान। मंदर सोवे पट पटंबर ताना, सेज सखाली बिकसे जियो। जो सो सिमरन तू अनदिन पियो, जय सिमरन तेरी जाए बलाए। जय सिमरन तुद पोहे नमाए, सिमर सिमर हर हर मन गाइए। इव सिमरन सतगुर ते पाइए, सदा सदा सिमर दिन रात। उठत बैठत सास गिरास, जाग सोए सिमर नस भोगा। हर सिमरन पाइए संजोगा, जय सिमरन नाही तुझ पहार। सो सिमरन राम नाम धारा।

का दुनिया सहसार बिदार जागत दुनिया हुशियार बिदार जागत मुसीयत हूँ रे पाई निगम हुशियार पर हरुआ देखत जम ले जाई राव नीब पियो आंब आंब पियो नीबा केला पाका चार नारी नाली ईर फल सेवर पाका मूर्ख मुगद गवारा हर पियो खांड रेत में।

पंच सहाई जन की सुबा पलो पुरो ना कहाओ वो गोम नामा कहे चित हर स्यो राता सुन समाध समाओ गोम माई न होती बाप न होता कर्म

आए गज हस्ती के प्राण उधारिय ले। दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर ले तू भारिय ले। गौतम नार अहल्या तारे पामन केतक तारिय ले। ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आए ले। सभय कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ। एकल माटी कुंजर चींटी भाजन है बो नाना रे। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। एकल चिंता राख अनंता औरत जो सब आसा रे। परणवे नामा भय निकामा कोठा कर को दासा रे। राग मारू महला पहला घर पहला चौपदे ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर। अकाल मूर्त अजूनी सभंग गुर प्रसाद सलोक। साजन तेरे चरण की हुए रहां सतूर। नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हजूर। शब्द पिछो राती सदड़ा नाम कसम काले। खेमे छत्र सराय से दिसन रथ पिड़े। जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले बाबा। मैं कर्महीन कुड़ियार नाम न पाया तेरा अंदा। परम पुला मन मेरा रहाओ। साध किते दुख पर फड़े पूर्व लिखे माए। सुख थोड़े दुखे अगले दुखे दुख आए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया क्या क्या मेल। साहब सो सलाही जिन कर दिखलाया खेल। संजोगी मेला बड़ा इंदन कीते पोग। भी जोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया। तिन करते लेख लिखाया लिखदात जोत वड्याई। मिल माया सुरत गवाए मूरख मन काहे कर सहमाना। उठ चलना खसमे फाण रहा। ताज साध सस कोई कर छड़ने रहे न कोई। किच खाजे की तर जाइए जे बहुड़ दुनिया आईए। सज काया पट हंडाए फुरमाइस बहुत चलाए। कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। घर घूमण वाणी भारी पा पत्थर तरन न जाए। पाओ बेड़ा ज्यो चढ़ाऊ कहो नानक देव काहू। मारू महला पहला घर पहला। करनी कागद मन मसवानी बुरा भुला दो लेख पे है। ज्यो ज्यो किरत चलाए त्यो चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चित सकी नहीं बाबरिया हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेते। रासरा चोक चुगै बनित भास छूट समूड़े कमन गुणे। काया आरण मन चलूहा पांच अगन लाग रहे। कोयले पापड़े तसे ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भाए। भया मनोर कंचन फिर होवे जे गुरु मिले तने हाय। एक नाम अमृत हो देवे तो नानक त्रिष्ट देहा। मारू महला पहला। बिमल मझार बसस निर्मल जल पदमल जावल रे। पदमल जावल जल संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कबर न जान सरे। पखस सुबास सुबाल बस निर्मल जल अमृत न लख सरे रहा। बस जल नितना बस वस्त अनिल मेर चचा गुण रे। चंद कुमणी दूर होने सस अनुभव कारण रे। अमृत खंड दूध मधुर संचस तू बंचा तर रे। अपना आप तू कवन छोड़ से बिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसै जन मूरख
ਅਗਮ ਸਾਸ ਬਣੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਛੋੜਸ ਸਵਾਣ ਪੂਛ ਜਿਉ ਰੇ ਇੱਕ ਪਾਖੰਡੀ ਨਾਮ ਨਰਾਚੈ ਇੱਕ ਹਰ ਹਰ ਚਰਣੀ ਰੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਵਸ ਨਾਨਕ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪਰੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ ਅਸੰਖੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਮਨ ਲਾਗੋ ਅੜਸਰ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸ਼ਬਦ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਗਰਭ ਕਹੇਲੀ ਸੁਣ ਸਹਿ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਸਹੇਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਦਣ ਸਾ ਕੀ ਰਾਖਾ ਮਾਏ ਹਰ ਬਿਨ ਜੀਉ ਨ ਰਹੇ ਕੈਸੇ ਰਾਖਾ ਮਾਏ ਰਹਾਉ ਹਉ ਦੁਹਾਗਣ ਖਰੀ ਰੰਗਿਆਣੀ ਗੈਸ ਜੋਬਣ ਤਨ ਪਛਤਾਨੀ

तलाय सहज सती तन करी सहेली तृष्णा तिखा निवारी जियो सहसा तोड़े ब्रह्म चुकाए सहज सिफती तनक चढ़ाए गुर कै शब्द मरे मन मारे सुंदर जोगा तारी जियो हुमे जलिया मनो विसारे जमपुर वजह खड़क करारे आपके कहिए नाम न मिले तू सहजीड़े पारी जियो माया ममता पवे ख्याली जमपुर फासे का जमजाले हित कमंदन तोड़ न साक ता जम करे खुआरी जियो ना हूं करता ना मैं किया अमृत नाम सतगुर दिया जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक शरण तुम्हारी जियो मारू महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय।

मुको कोई न जानत कहीं अत दास तुम्हारा यहाँ ओट आधारा रहाओ सर्ब धारणा प्रतिपारणा एक बिनो दीना तुमरी बिद तुम ही जानो तुम जल हम मीना पूर्ण बस्तीर्ण स्वामी आहे आयु पछ सगलो भूमंडल खंडल प्रभ तुम ही अछय अटल अक्यो देवा मोहन अलख अपारा दान पावो संता संग नान करेन दसारा मारू महला पंजवा तृप्त अगाए संता गुर जाने दिन मंता ताकि किश कह न जाही जाको नाम वडाई लाल मुला लालो अगह अतुला नामो रहाओ अवगत स्यो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो पेखत सगल ध्यानो तज्यो मन ते अपमानो नेचल तिन का ठाणा गुर ते महल पछाणा अन दिन गुर मिल जागे हर की सेवा लागे पूर्ण तृप्ति अगाए सह समान सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुर ते पाया मारू महला पंजवा कर छेवा दोप दे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाणपा मिल सार त्या गुमान अवर सब कुछ मिथ्या रसना राम राम बखान मेरे मन करण सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम रहाओ दुख दीन ना पहो ब्यापै मिलै सुख मिश्राम गुरप्रसाद नानक बखानै हर भजन तत् ज्ञान मारू महला पैवा जिने नाम विसारिया से होत देखे खेह पुत्र मित्र बिलास बनता टूट ते ए नेह मेरे माना नाम नित नित लेह जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देह रहाओ बिरक छाया जैसे बिनसत पवन चूलत मेह हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत एह मारू महला पैवाम पुरख पूर्ण सुखे दाता संग बस्तो नीत मरै न आवै न जाए बिनसे व्यापत उसन ना सीत मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन मैं हर हर निधाना ए निर्मल गीत रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिस सीद नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक ते संग बीद मारू महला पंजवा चलत बैसत सोभत जागत गुर मंत्र हृदय चितार चरण सरण भज संग साधु पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय धार कर प्रीत मन तन लाए हर सिंह अवर सगल विसार हाओ जियो मन तन प्राण प्रभ ते तू अपने आप निवार गोविंद भज सब स्वार्थ पूरे नानक कबो नहार मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ता परेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस जियो मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीर साजन सखा बंदप हरेक नानक कियो मारू महला पंजवा।

प्राणे आधारा करण करण समरथ स्वामी नानक तिच कुरबान हे एको अंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नौवा हर को नाम सदा सुखदाई जाको सिमरिया जा मल उदरियो गणका हूँ गत पाई रहाओ पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध्याई ताको दुख हरियो करुणा मैं अपनी पैर बढ़ाई जे नर जस कृपा निद गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही पुरुष गही आन सरनाई मारू महला नौवा अब मैं कहाँ करो री माई सगल जन्म बिखियन स्यों खोया सिमरियो नहिं नाई रहाओ काल पास जब गर मैं मेली तै सोद सब बिसराई राम नाम बिन जा संकट मह को अभूत सहाई जो संपत अपनी करमानी छिन में पई पराई कहो नानक जय सोच रही मन हर जस कबू ना गाई मारू महला नौवा माई मैं मन को मार ना त्याग्यो माया के मर जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परियो सिर ऊपर तब सोवत तै जाग्यो कहाँ होत अब कै पुछताए छूटत नाहिन भाग्यो ए चिंता उपजी कट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस मैं पाग्यो मारू अष्टपदियां महला पहला कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका अठसठ तीर्थ बौकणा परम था के पेखा साचो साहेब निर्मलो मन मानै एका तू अजरावर अमृतू सब चालन हारी नाम रसायन पाए लै पर हर दुख भारी रहाओ

मन वस सब कुल उदारण हार, सच्चा वकर नाम है सच्चा वापारा, लाहा नाम संसार है गुरमति विचारा, दूजे पाए कार कमावनी निरतोटा सह सारा, साची संगत थान सच सच्चे करम बारा, सच्चा भोजन पाओ सच सच नाम आधारा, सच्ची वाणी संतोखिया सच्चा शब्द विचारा, रस भोगन पासाइया दुख सुख संघारा, मोटा नाम तराई है गल अवगन भारा, मानस दात ना हो वही तू दाता सारा, अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा, गुर शब्दी दर जोई है मुक्ते भंडारा, नानक मेल न चुकई साचे वापारा, मारू महला पहला बिख बोयता ला दिया दिया समुंद मझार, कंधी दिसन आवे ना उरवार नाम पार, वंजे हाथ ना के उठू जल सागर असराल, बाबा जग फाता महाजाल, गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम समाल, रहाओ सतगुर है बोयता शब्द लंघावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार, तिथै सच्चा सच नाए पवजल तारण हार, गुरमुख लंघे से पार पए सच्चे स्यों लिवलाए, आवा गौण निवारिया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजे सच्चे रहे समाए, सब पिड़ाई पाईऐ बिख अंतर मन रोस, पूर्व लिखिया पाईऐ किसनो दीजै दोस, गुरमुख गार्ड जे सुने मने नौ संतोष, मागर मच फाहीऐ कुंडी जाल बताए, दुर्मत फाथा फाहीऐ फिर पछोताए, जमण मरण ना सोजई कीर्तना मिटिया जाए, होमै बिख पाए जगत उपाया शब्द वसै बिख जाए, जरा जोय ना सकें सच रहे लिवलाए, जीवना मुक्त सो आखिऐ जिस विचों मैं जाए, तंदै तावत जग बाध्या ना बूझे विचार, जमणा मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार, गुरा किसे उभरे सच्चा शब्द विचार, सूट पिंजर प्रेम कै बोलै बोलन हार, सत चुगै अमृत पीऐ उडै ता एक वार, गुर मिलिया खसम पछाणियै कहो नानक मोख द्वार, मारू महला पहला शब्द मरै ता मर मर भागो किस पै जाओ, जिसकै डर पै भागी है मृत ताको नाओ, मारे राखे एक तू बीजो नाही ताओ, बाबा मैं कुचील काचो मतहीन ना बिना को कछ नही, गुर पूरे पूरी मत कीन रहाओ, अवगुण सो पर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन भागा धन नाहे, जिन कै नाम ना मन वसै से बादे दुख सुहाए, जिनी नाम विसारिया से कित्याए संसार, आगे पछे सुख नहीं गाडे लादे शार, विछड़िया मेला नहीं दुखणो जम द्वार, अगे क्या जाना नाहे मैं भूले तू समझाए, भूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कहन न जाए, साजन देखा ता गल मिला साच पठायो लेख, मुक्ति माने तन खड़ी गुरमुख आखी देख, तुद पावे तू मन वसे नदरी कर्म वसेख, भूख प्यासो जे पवे क्या तिस मांगो दे, बीजो सूजै को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकिया तिन देखिया आप वडाई दे, नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनो साचो चतर स्वरूप, ज्योत छपावै सोतियै तू दीपक तू धूप, गीर सार चाकै सुने बाद साध तन रोग, सच पावै साचो चवै छूटै सोग विजोग, नानक नाम न विसरै ज्योत छपावै सो होग, मारू महला पहला साची कार कमावनी होर लालच बाद, ए मन साचै मुहिया जेवा सच साध, बिनावै को रस नहीं होर चले बिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खसम हमारे,
ज्यों फरमावै त्यों चला था चला प्यारे रहाओ अन देना लाले चाकरी गोले सिर मीरा गुर बचने मन विच या शब्द मन तीरा गुर पूरे शाबास है काटे मन पीरा लाला गोला धनी को क्या कहो वडियाई है भाणे बख्शे पूरा धनी सच कार कमाइए विछड़िया कहो मेल लए गुर को मिल जाइए लाले गोले मत करी गुर की मतनी की साची सुरत सुहावनी मन मुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु सच तीरक तुरकी साचे बैसन उठना सच भोजन पाखिया चित सच्चे वितो सच्चा साचा रस चाखिया साचे कर साचे रखे गुर बचन सुपाखिया मन मुख कौ आलस घणो फाथे उजाड़ी फाथा चुगै नित जोगड़ी लग बंध बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए साचे निताड़ी अनहत लाला बिदया प्रभ हेत प्यारी बिन साचे ज्यों जल बलो झूठे वेकारी।

तर संग सहाय सव न चीत जो बैरायित स्यो प्रीत बलुआ के गृह भीतर बसै अंध केल माया रंग रसै देड़कार मानै मनह प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बकार महा लोभ त्रोह याहो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन।

जाननहार प्रभु परबीन, बार पेख न काहू पीन, और उपदेश आप न कर, आवत जावत जन्म मर। जिसके अंतर बस निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार, जो तुम भाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता।

कै जे प्रसाद करे पुन बोदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू चौर बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करन नाद जे प्रसाद पेखे बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हस्त कर चलहे जे प्रसाद संपूर्ण फलहे जे प्रसाद परम गत पावहे जे प्रसाद सुख सहज समावे।

जेह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तता को जाप, जेह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे, जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तुता स्योराच, जेह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जब सोए, आज पाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभु कृपाते होए प्रगास प्रभु दयाते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मातो तुम होए, सर्वदान प्रभ तेरी मया आपो कछु न किन्हु लया, जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानकिन कै कछु न हाथ, श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह

साध के संगमुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध के संग मटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सो ज्ञान, साध के संग बुझे परम नीरा, साध संग सब होतन बेरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एको पर जतन, साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा परम अहि समानी, साध का खा संग अगोचर मिले, साध का संग सदा पर फुले, साध का संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग होए सब की रीन, साध का संग मनोहर बैन, साध का संग ना कतहूं तावे, साध संग अस्तित मन पावे, साधक संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रसो परसन, साध संग दुश्मन समीत, साधु कै संग महापनीत, साध संग के स्वयं ही बैर, साधक संग न बिगा पैर, साधक संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा, साधक संग नाही

बने आई। साधक संग न कब होता वै, साधक संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह। साधक संग बसै थन ऊचै, साधु कै संग मैल पहुँचै। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साधक संग सब को लोदार, साध संग साजन मीत कटम निस्तार। साधु कै संग सोतन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साधक संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध कै संग कलु कत हरै, साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सहेला, साध संग बिसरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साधक संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साधरिद बसै, नानक उदरै सा सुन रसै। साधक संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर्प निस्तरै। साधक संग लगै परम मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साधक

सात की उपमा तेह गुण ते दूर, सात की उपमा रहे पारपूर, सात की शोभा का नाही अंत, सात की शोभा सदा बेअंत, सात की शोभा ऊँची ऊँची, सात की शोभा मूच ते मूची, सात की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोई, और न पेका एक से बिन कोय, नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नरलेप, जैसे जल में कमल आलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा नरदोख, जैसे सूर सर्व को सोख।

ब्रह्म ज्ञानिक मन होए परगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उति ऊचा, मन अपने है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पय, नान गिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी किसा ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।

ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी कसौ पर हाथ।

जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जित जोगी, कई कोट राज रस भोगी। कई कोट पंखी सर पो पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पौन पौनी बै संतर, कई कोट देश भूमंडल। कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र शर शतर। सागल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै। कई कोर राजस तामस सातक, कई कोर वेद प्राण सिमरतर शास्त्र। कई कोर की रतन समुंद, कई कोर नाना प्रकार जंत। कई कोर किए चिर जीवे, कई कोर की रिमिय स्वर्ण थीवे। कई कोर जाख किन्नर पिसाच, कई कोर भूत प्रे सुकर मिर गाच। सब ते नेरै सबहू ते दूर, नानक आपलिप तरह्या भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर स्वर्ग निवासी। कई कोट जन्मे जीवे मरहे, कई कोट बो जूनी फिरहे। कई कोट बैठ थी खाए, कई कोट काले थक पाहे। कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत। जह जय पाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्राप कह हाथे। कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म है पार ब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्राप्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगी सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको हो आप सो प्रसन्न, नानक तिजन सदा धन तन। कई कोट खानी अरखंड, कई कोट कास ब्रह्मांड। कई कोट हो अवतार, कई जोत कीनो विस्तार। कई बार

अणजानत बिख्या मै रचै, जे जानत अपन बाप बचै। भरमी पूला दे दिसतावै, निमख माहि चार कुंड फिर आवै। कर किरपा सा अपनी भगत दे, नानक ते जाना मिले। खिन मै नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज। जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दे दिस प्रगटावै। जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखन गणै जगदीस। जियो पिण सत की रास, घट घर पूर्ण ब्रह्म प्रगास। अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई। इसका बल नाही साथ, करन कराउन सर्व को नाथ। आज्ञाकारी बपरा जियो, जो सपा सोई फुन थियो। कबू उच नीच मैं बसै, कबू सोग हर खरंग हसै। कबू

कबू महाक्रोध बकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पिखा नीच का साजा, कबू अपकीत में आवै, कबू पला पला कहावै, ज्यो प्रो राखै तिवी रह है, गुर प्रसाद नानक सच कह है, कबू होए पंडित करे बखियान।

परमिया नाना रूप जो स्वंग दिखावै, जो प्रपावै तिवै निचावै, जो सुपावै सोई होए, नानक दूजा वर ना कोई, कबू साध संगति हु पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नामृति एक रंग, सदा बसी पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना,

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतरराज अवमान सो नरक पाती होत स्वान जो जाना में जो बनवंत सो होत बिष्टा का जंत आस को कर्मंत कहावे जन्म मरै बो जून परमावे तन पूमका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा इसके हृदय गरीबी बिसावे नानकी हां मुक्ता के सुख पावे तरवंता हो कर गिर भावे तृण समान का संग न जावे बौल कर्मान को पर करियास पल पीतरता का हो विनाश सबते आव जन बलवंत खेन में हो जाए पसमंत किसे न बदय आप अहंकारी धर्म राय तस करे खुवारी गुरप्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगे परवान कोड कर्म करे हो तहरे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे।

निर्मल सोए, जब लग जाने मोहिते कछ होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब ही जाने मैं किस करता, तबला गर्भ जून मैं फिरता। जब तारे को ब्यारी मीत, तब लग निचल नाही चीत। जब लग मोह मंगन संग माए, तब लग धर्म राय दीस जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सह कटेला कोट धावे, तृप्त नावे माया पाछै पावे। अनक भोग भिख्या के करै, नै तृप्तावै खप कमरै। बिना संतोख नहीं कूरा जै, सुपन मनोरथ बिथि सब काजै। नाम रंग सर्व सुख होए, विभागी किसै प्राप्त होए। करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन करावन करने हार, इसके हाथ कहा विचार। जैसे दृष्ट कर तैसा होए, आपी आप आप रसोए। जो सकीन सो अपने रंग, सब ते दूर सबहु कै संग। बूझे देखा करै बबेक, आपी का पिया नेक। मरे न बिनसे आवे न जाए, नानक सद ही रिया समाए। आप देश समझै आप, आपे रचा सब कै साथ। आप कीनु आपन विस्तार, सब कछ उसका हो करने हार। उसते पिन कहो हो किश होए, थान तनंतर कै सोए। अपने चलते आप करने हार, कौत करै रंग अपार। मन में आप मन अपनी माहे, नानक कीमत कहन न जाए। सत सत सत प्रभ स्वामी, गुर प्रसाद किन वखियानी। सच सच सच सब कीना, कोट मदै किन विरलै चीना। भला भला भला तरा रूप, असुंदर अपार अनूप। निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, घट घट सुनी सरवण बखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत।

पवेत संत का दुखी किसे का नहीं मेत। संत के दुखी को डान लाग है, संत के दुखी को सब त्याग है। संत का दुखी महंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी। संत का दुखी जन्म है मर है, संत के दुख ने सुख ते टर है। संत के दुखी को ना ही ठाओ, न संत पावे ता ले मलाए। संत का दुखियत बीते टूट है, संत का दुखी कत काज न पहुंचे। संत के दुखी को ध्यान परमाई है, संत का दुखी उजड़ पाई है। संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दुखी की जड़ किछ नाही, अपन बीजा पे ही खाहे। संत के दुखी का और ना राखन हार, नंग संत मिलाए भावे ता ले उबार। संत का दुखी यूं बिल लाए, जो जाल बिहोन मछली तरफड़ाए। संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाप की दिन नहीं त्रापै। संत का दुखी छुटा अकेला, जो पुआड तिलखित माए दुहेला। संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुख सत मिथ्या कहत। किरत निंदका तुर ही पया, नांग जो सुपावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिला सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे न आसा, संत का दुखी उठ चला निराशा। संत का दुख न दृष्टा कोई, जैसा भावे तैसा कोई होए। पया किरत न मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए। सब कट तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सास ग्रास। सब किश वरतै सका किया, जैसा करे तैसा को थिया। अपना खेल आव करने हार, दूसर कौन कह विचार। जिसनों कृपा

तिसकाउ करण जोग तिसमें दूसर हुआ ना होगा। जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते ऊच निर्मल एह करणी।

जिसका साधन कृपा धारी साध संग जपना मुरारी थित पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस सरवना।

यो तन संचो वो भगवंतो संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता सो तन हर सेवा थे पावे जे सुख को नित

ज्यों किरपन के निरार्थ दाम तहन तहन तेजन जे कट बस्यो हार नाव नानक ताक बलबल जाम रहत अवर काश अवर कुमावत मन नहीं प्रीत मुखों गांड लावत जान नहार प्रभु प्रवीन बाहर पेख न काहूं पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम पहाने तिन प्रभु जाता नान कुन जन चरण प्राता करो बिहंती पार ब्रह्म सब जाना अपना किया आपे माना आपे आप करतन वेरा किस दूर जनावत किस बिजावत नेरा उपाव श्याम सकल तेरा सब कस जाना आत्म की रात जिस पावत सलाई लाड़ लाए धान तनंत्र समाये सो सेवक जिस कृपा करी नेमक नेमक जाप नानक हरी सलोक काम क्रोध अरलोमो इन जाय हमेव नान प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी ते प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ध्याए सदा मन अंदर ते प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पैर सिमरत सरसना ते प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याईया ध्यावन जोग जे प्रसाद पाठ प्रणव हड़ावे तिसे त्याग कात पर लुभावे जे प्रसाद सुख से सुई जाय मन आठ पैर ताका जास गावी जाय जे प्रसाद तुर सब को मान मुक्ता को जास रस मुखान जे प्रसाद तुर रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जापत दरगाह मान पावे नानक पद सेती कर जावे जे प्रसाद अरो कंचन देही लिव लाभ रो तिसराम स्नेही जे प्रसाद तेरा ओला रह तो मन सुख पावे हर हर जस कहत तो, जे प्रसाद तेरे सगल छेदर ढाके मन शरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी बहुत करे जे प्रसाद आपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद आसो हस्त असवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिल्क तना राग प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत मनाई ऊट पैर सा तिसे त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जे प्रसाद करें पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरु सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पात्र है गुर प्रसाद नानक जास कहे जे प्रसाद सुने करनाथ जे प्रसाद पेखे बिस्मात जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना जे प्रसाद हास्त कर चलें जे प्रसाद संपूर्ण फलें जे प्रसाद परमगत पावें जे प्रसाद सुख सह समावें ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूह न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तास राज जे प्रसाद सब की गात होए नानक जाप जपै जाप सोए आप पाए जपै सुनाओ आप गवाए सुहर गुणगाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगाश प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सुप्रसन्न बसमन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वनान प्रभु तेरी मैया आपू कछु न किन्हु लया जी जित लावो तित लगे हर नाथ नानक इनका कछु न सलोक अगम अगाद पार्वन सोए जो जो कह समुक्ता होए सुन मीता नानक निमंता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध के संग उजल होत साध संगमल सगली खोत साधक संग मिटाय अपमान साधक संग पंकटाय सुज्ञान साधक संग बुझाय प्रम नेरा साध संग सबोत निवेरा साधक संग पाए नाम रत्न साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरना कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रमाय सुमानी साधक संग गोचर मिलाय साधक संग सदा प्रफुलाय साधक संग अवै बस पंचा साध संग अमृत रास पुंचा साध संग हो साब की रेन साधक संग मनोहर बहन साधक संग नका तू तवे साध संग अस्तित्व मन पावे साधक संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सामीत साधु कह संग महापुनीत साध संग किस्यो नि बैर साधक संग न बींगा पैर साधक संग नाई को मंदा साधक संग ने परमानंदा साधक संग नाई हों ताप साधक संग तजय साब आप आपे जाना साध बढ़ाई
नान साध प्रभु बने आई। साधक संग न कब ऊंता हुए, साधक संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर रह, साधु का संग अजार सह। साधक संग बस थान ऊंचा, साधु का संग महल पहुंचा। साधक संग दृढ़ सब धर्म, साधक संग केवल पार्वम। साधक संग पाए नाम निधान, नानक साधु का कुर्बान। साधक संग सब कोल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु का संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे। साध संग धर्म रह करे सेवा, साधक संग सो बासुर देवा। साधु का संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साधक संग सर्वथान गाम, नानक साधक संग सफल जनम। साधक संग नहीं कश का हल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साधक संग कलयुग तरह, साधक संग नरक पर हरह। साधक संग इहां सोइला, साध संग बिशरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साधक संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद वसै, नानक उदरा साध सुन रस है। साधक संग सुनो हर नाम, साध संग हर के गुण गाम। साधक संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साधक संग लगा प्राण मीठा, साधु का संग घट खट डीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग घात पै हमारी। साधक संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा भेद न जान, जेता सुने तेता बखियान। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचे ऊंची, साध की शोभा मूचे मूची। साध की शोभा साध मने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सुन कोय। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अस्पदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौशोक। ब्रह्म ज्ञानी का दृढ़ समान, जैसे राजलंको लागा तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी का तीर्ज एक, ज्यों बस्ता को खोदा को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाहो, नानक ज्यों पाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मलते निर्मला, जैसे मैल न लागा जला। ब्रह्म ज्ञानी का मन हुई प्रगाश, जैसे तारे ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब उपमया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपरे आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो माह। ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपा सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसा प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा साध जागत, ब्रह्म ज्ञानी हम्बो त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख साई निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी का अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करा प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाना भेद, ब्रह्म ज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अदाखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का यंत्र पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण प्रख दाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी। श्लोक और धर जो अंतरनाम, सर्व में पिख भगवान। निम्क निम्क ठाकुर नमस्कार, नानको पर सगल निस्तार। अष्टपदी
ਵਿਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ ਮਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਰਸ਼ ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖਾ ਨੇਤਰ ਸਾਧਕੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤ ਸੰਗੇਤ ਕਰਨਾ ਸੁਣੈ ਕਾਹੂ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੈ ਮਨ ਕੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਰੈ ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਐਸਾ ਪਰਸ ਵੈਸਨੋ ਸੋਜ ਸੁਪਰ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨੇ ਕਰਮ ਤਿਸ ਵੈਸਨੋ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ ਕਾਹੂ ਬਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਚਾ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚਾ ਮਨ ਤਨੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ ਸਭ ਉਪਰਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜੁ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕੋ ਵੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਾ ਰੰਗ ਸਗਲ ਤਿਆਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਕਾ ਸੰਗ ਮਨ ਤੇ ਬਿਨਸੈ ਸਗਲਾ ਭਰਮ ਕਰ ਪੂਜਾ ਸਗਲ ਪਾਰਮ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਪਾ ਮਲਖ ਹੋਵੈ ਤਿਸ ਭਗਵਤੀ ਕੀ ਮਤ ਊਤਮ ਹੋਵੈ ਭਗਵੰਤ ਕੀ ਟਹਿਲ ਕਰੈ ਨੇਤਨੀਤ ਮਨ ਤਨ ਰਪੈ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦਾ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਭਗਵਤੀ ਭਗਵੰਤ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਸੋਧੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰਸ ਪੀਵੈ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਗ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹਿਰਦਾ ਵਸਾਵੈ ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਫਿਰ ਜੋ ਨਾਵੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮ੍ਰਿਤ ਬੂਜਾ ਮੂਲ ਸੂਖ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅਸੂਲ ਚਉ ਵਰਣਾ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਨਕ ਪੰਡਿਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਵ ਕੋ ਗਿਆਨ ਚਉ ਵਰਣਾ ਮੈਂ ਜਪੈ ਕੋ ਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਾਤ ਹੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਅੰਤਰ ਓਰ ਧਾਰੈ ਪਸ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਕਤ ਪਾਥਰ ਕੋ ਤਾਰੈ ਸਰਵ ਰੋਗ ਕਾਖਤ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ ਕਾਹੂ ਜੁਗਤ ਕਿਤੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਧਰਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਸਿਲਖਿਆ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਸਕੈ ਮਨ ਪਾਰਬਮ ਕਾ ਨਿਵਾਸ ਤਿਸਕਾ ਨਾਮ ਸਤ ਰਾਮਦਾਸ ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਸੰਤਨ ਭਾਈ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਸੁਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਵਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੋਗਤ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿ ਚਿਤ ਘਰ ਰੱਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਹੋਏ ਅੰਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸ ਕਰੈ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਵਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਦ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸ਼ਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਤੀਰਥਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭਨ ਪ੍ਰਮੇ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸ਼ਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕੰਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਅਵਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭਿਗ ਆਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਧਰਮ ਕੋਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਏ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਥਰ ਬਿਰਖ ਨਿਭਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸਿਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵਦਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿਰਛੱਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਇਸ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਤਾਮ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਚਿਰਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਰੀਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸ਼ੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੀਰਾ ਸਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਪਿਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵ ਹੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸੀ ਕਹਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਧਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਪਹਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਏ ਬੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖਜਾਂਤੇ ਆਤਮੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਣਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਤਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀਅਰ ਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੋਤ ਕਿਨੋਂ ਵਿਸਤਾਰ
कई बार पसरो पासार सदा सदा एक एक ओंकार कई कोट कीने बहुपान प्रवते हो प्रमाय समात ताकांत न जाना कोई आपे आप नान प्रभ सोय कई कोट पार्वम के दास तिन होत आत्म प्रकाश कई कोट तात के बेते सदा निहारा एक को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सदी जीवे कई को नाम गुण गावे आत्म रस सुख सह समावे अपने जन को साथ साथ समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण पावे कै दूसर नाही को नानक बिरहरण जल थल मील सो अष्टपदी करण करावन करना जोग ज्योतिष पावे सोई हो खिरमै थाप थाप नहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे थार अधर हावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समरा समाई प्रभ पावै मानो गहत पावै प्रभ पावै तो पाथर त्रावै प्रभ पावै बिन साथ राखै प्रभ पावै तो हर गुण पाखै प्रभ पावै तो पत उधर आप करै अपन विचार ध्वसरिया का आप स्वामी केला बिकसंतर जामी जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर ना आवै कौ मानुख ते क्या हो आवै जो तुस पावै सोई करावै इसके हाथ होए तो सब किछले जो तुस पावै सोई करे।

अष्टपदी जब आकार कृष्ण दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरोध किस मात जब इसका वर्ण चेन न जापत तब अर्क सुख हो किसे व्यापत जब अपने आप पर ब्रह्म तब मोह कांक शोभत भरमो अपन खेला भरतीजा नानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल धनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एख्या रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सोभाए तब सेव सकत कहो कि ठाए जब आप अपनी जोत धरै तब कौन डर कौन कतर डराय अपन चलता पकरन हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन मन को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किश हुए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप आपिए चर्जा नानक अपन रूप आपियो प्रजा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तब बिन मैल क्या कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शदर लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भूख कौन तृप्तावै करन करावण करने हार नानक कृते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पेपर बीन तय बेदेव कहा को चीन जब आपन आप उतार है तो सगन अपसगन का विचार है जय अपन जापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्मरे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय शल शेद पेल समाया उहां किसे व्यापत माया आप सको आपे आदेश ते गुण का नाही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लाग गया।

क्या जय अवगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप दू पाक आपे धनी उनकी शोभा बनी आपे कौत करे अनद चोज आपे रस भोग निरजोग जिस भावै तसपन नाय लावै जिस भावै तस खेल खिलावै बेशुमार अथाह।

तन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआउ जन कै संग चित आवै नाऊ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन

पूरे गुर का सुने उपदेश पार ब्रह्म नेट कर पेख सा सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद आसन त्याग उतरंग संजना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर तरो हर तन के परले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग पज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमली कलाल रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाद वाज्य है सुन सुनंद करे प्रभ गाज्य है प्रगटे गोपाल महंत कै माथे नान कुदरतन कै साथे सरन जो सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मिलाए।

तुम ते हुए तुमरी गात मेत तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु साहिब जीओ। दोयकर जोड़ करो अरदास तुद भावै ताण रास। अरदास एको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वाह श्री भगवती जी।

मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे सुन बेनती प्रभ दीन दयाला साध गावे गुण सदा रसाला जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिस नेरा जान की भूख तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुखमाना नानक देवन हार सुजाना राम रमत संतन सुखमाना नानक देवन हार सुजाना कोई न किस ही संग काहे गर्बी है एक नाम आधार पौ जल तरबी है मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुरु पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तीरे रहाओ राजमाल जंजाल काज न किते गनो हर कीर्तन आधार निश्चल एह तनो जेते माया रंग तेत पछाव्या सुख का नाम निदान गुरमुख गाव्या सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस परोसा खसम का नानक के जियरे वाहिगुरु साहिब जियो एक ओंकार सत गुर प्रसाद राग पैरो महला पंजवां चौपते कर दूजा श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा कवन बिख्या रसमाता रे मन मेरे तू गोविंद पाज अवर उपाव सगल मैं देखे जो चित भी है तित बिस बिगरस काज रहाओ ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना हर की भगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना जियो पिण तन तन सब प्रभ का साकत कहते मेरा एम बुद्ध दुरमत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संजम तट तीर्थ नहीं पाया मिट्या आप पै शरणाई गुरमुख नानक जगत तरया तराया पैरो महला पंजवा वन मैं पेख्यो तृण मैं पेख्यो गिरो पेख्यो उदासाए दंड दंडतार जटारे पेख्यो वर्त नेम तीर्थाए संत संग पेख्यो मन माए ऊब प्याल सर्व मैं पूर्ण रस मंगल गुण गाय रहाओ जोग पेख संन्यासे पैख्यो संत जत जंगम कापड़ाए तपी तपीसर मन मोहे पेख्यो नट नाटिक निरताए चौ मैं पेख्यो खट मैं पेख्यो दस अष्टी सिमरताए सब मिल एको एक वखाने तो किसते कहो दुराए अगे अगे बेअंत स्वामी ने कीम कीम कीमाए जन नानक तिन कै बल बल जाइए जे कट पर गटियाए पैरो महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिख संचै नित डरता फिरै है निकटे अर पेद ना पाया बिन सतगुर सब मोहि माया नेड़ै नेड़ै सब को कह गुरमुख भेद विरला को लह रहाओ निकट ना देखै पर ग्रह जाए दर्ब हिरै मिथ्या कर खाए पेठ गौरी हर संग ना जानिया बाज गुरु है परम पुलानिया निकट निकट ना जाने बोले कूड़ माया मोहे मूठा है मूड़ अंतर वस्त दिसंतर जाए बाज गुरु है परम पुलाए जिस मस्तक कर्म लिखिया लिलाट सतगुर सेवे खुले कपाट अंतर बार निकटे सोए जन नानक आवे ना जावे कोए पैरु महला पंजवा जिस तू राखे तिस कौन मारे सब तुझी अंतर सगल संसारे कोट उपाव चितवत है प्राणी सो होवे जिस करे चोज विडानी राखो राखो किरपा तार तेरी शरण तेरे दरबार रहाओ जिन सेव्या निरपौ सुखदाता तिन पौ दूर किया एक पराता जो तू करे सोई फुन होए मारे ना राखे दूजा कोई क्या तू सोजै मानस बाण अंतर जामी पुरख सुजा अंतर जामी पुरख सुजान एक टेक एको आधार सब किछ जानने सिरजनहार जित उपर नदरी नदर करे करतार जिस जन के सब काज सवार तिसका राखा एको सोए जन नानक

ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਈ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੋ ਕੜੀਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਸੇ ਵਿਸਰੇ ਨਰ ਹਰ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਪਾਏ ਕਿਆ ਕੜੀਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਕੜੇ ਕੜ ਪੱਚਿਆ ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਪਰਮ ਪਰਮ ਪਰਮ ਖਪਿਆ ਰਹਾਓ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਅਨ ਅਨ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਅਨਿਆਇ ਕੋ ਮਰਤਾ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਕਿਛ ਜਾਣੇ ਨਾਹੀਂ ਕਿਆ ਕੜੀਏ ਜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਹੀ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਕਿਛ ਹੋਏ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੜੀਏ ਜੇ ਪੂਲ ਰੰਗਿਆਣੇ ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸੋ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਕਰੇ ਨਿਬੇਰਾ ਦੁਤੀਆ ਨਾਸਤ ਏਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਏ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਿਨ ਬਾਜੇ ਕੈਸੋ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਬਿਨ ਕੰਠੇ ਕੈਸੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੀ ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੇ ਰਬਾਬ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥੈ ਸਭ ਕਾਜ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕਹੋ ਕੋ ਤਰਿਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈਸੇ ਪਾਰ ਪਰਿਆ ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਜੇਵਾ ਕਹਾ ਕੋ ਬਕਤਾ ਬਿਨ ਸਰਵਨਾ ਕਹਾ ਕੋ ਸੁਨਤਾ ਬਿਨ ਨੇਤਰਾ ਕਹਾ ਕੋ ਪੇਖੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਰ ਕਹੀ ਨਾ ਲਿਖੈ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਕਹਾ ਕੋਈ ਪੰਡਿਤ ਬਿਨ ਅਮਰੈ ਕੈਸੇ ਰਾਜ ਮੰਡਿਤ ਬਿਨ ਬੂਜੈ ਕਹਾ ਮਹਾ ਠਹਿਰਾਨਾ ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ ਬਿਨ ਬੈਰਾ ਕਹਾ ਬੈਰਾਗੀ ਬਿਨ ਹੋ ਤਿਆਗ ਕਹਾ ਕੋ ਤਿਆਗੀ ਬਿਨ ਬਸ ਪੰਚ ਕਹਾ ਮਨ ਚੂਰੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਤ ਸਤ ਹੀ ਚੂਰੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਪੇਖੇ ਕਹੋ ਕੈਸੋ ਧਿਆਨ ਬਿਨ ਪੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਬਿਕਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਲੀਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਚ ਦੋਏ ਪਤੰਗਾ ਨਾਦ ਰੋਗ ਖਪ ਗਏ ਕੁਰੰਗਾ ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਰਹਾਓ ਜੇਵਾ ਰੋਗ ਮਿਨ ਗ੍ਰਸਿਆਨੋ ਬਾਸਨ ਰੋਗ ਪਵਰ ਬਿਨਸਾਨੋ ਹੇਤ ਰੋਗ ਕਾ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਤ੍ਰੈਬਿਧ ਰੋਗ ਮੈਂ ਬਦੇ ਬਿਕਾਰਾ ਰੋਗੇ ਮਰਤਾ ਰੋਗੇ ਜਨਮੈ ਰੋਗੇ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਗ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਰਤੀ ਨਾ ਪਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਰੋਗ ਕਤੈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਦਇਆ ਬਾਹਾ ਕੱਪੜ ਰੋਗੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟੁੱਟੇ ਬੰਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਪੰਜ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਬੇ ਨਾ ਚੂਰੀ ਅੰਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ ਗੁਰਪੂਰੇ ਦਿਓ ਰੰਗ ਲਾਏ ਰਹਾਓ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕੋ ਰਾਜਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਜਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੰਗ ਗੁਲਾਲ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਧਨਵੰਤਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਦ ਨਿਬਰੰਤਾ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਕਾਣੇ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ ਚੀਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ ਚੀਤ ਆਵੇ ਸਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤਾ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਚਰੰਗਜੀਵੀ ਪਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੀ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਕੁਟੰਬ ਹਮਾਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਵਾਸੀ ਹਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਸਭੈ ਸੁਹੇਲੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਮੇਲੇ ਰਹਾਓ ਮੰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਬੇਅੰਤ ਅਪੁੱਛੇ ਰਾਜ ਹਮਾਰਾ ਸਦ ਹੀ ਨੇਚਲ ਮਾਲ ਹਮਾਰਾ ਅਖੂਟ ਅਬੇਚਲ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜਗ ਸੋਭਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਬਾਜ ਹਮਾਰੀ ਥਾਂ ਥਨੰਤਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਕਰ ਕਰ ਹੋਈ ਭਗਤ ਹਮਾਰੀ ਸਭਨੀ ਲੋਈ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟੇ ਮਾਜ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਰਲ ਕੀਨੀ ਸਾਂਝ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪਤੀਨੇ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਏਕੈ ਰੰਗ ਲੀਨੇ ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਾਤੇ ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਮਿਲੈ ਨਾ ਢੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨਾਏ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਰਹਾਓ
पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चुका पड़दा ता नदरी आया खसम तू है सबना केराया तिस पाणा सुके काष्ट हरिया तिस पाणा ता थल सिर सरिया तिस पाणा ता सब फल पाए चिंत गई गल सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण को तुठा मन तन सीतल मन अमृत पुठा पार ब्रह्म गुर पे दयाला नानक दास देख पे निहला पैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बिहमो ताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बिदाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ सतगुर मेरा सरबत सतगुर मेरा सर्ब प्रतपालै सतगुर मेरा मार जीवालै सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है प्रगट प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीबान सतगुर कह हां सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेव्या तिन पौना ब्यापै जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै नानक सोदे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद पैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट पया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुर बाया नाम लैत अठसठ मन मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर उपदेशया तत् ज्ञान रहाओ नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अतमूढ़ सुज्ञाना नाम लैत प्रगट उजियारा नाम लैत छुटे जंजारा नाम लैत जम निड़ ना आवै नाम लैत दरगा सुख पावै नाम लैत प्रभ कह शाबास नाम हमारी साची रास गुर उपदेश कहियो एहो सार हर कीरत मन नाम आधार नानक उदरै नाम पौ नानक उदरै नाम पौ नानक उदरै नाम पुन पुनः चार अवर कमल लोकै पतियार पैरो महला पंजवा नमस्कार ताको लख बार एव मन दीजै ताको वार सिमरन ताके मिटे संताप होए आनंद ना व्यापे ताप ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूरन सब काम रहाओ जां की दृष्ट दुख डेरा टहें अमृत नाम सीतल मन गह अनेक भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूरन हारी खिन मैं ऊने सुबर परिया खिन मैं सुके कीने हरिया खिन मैं निथावे को दीनो थान खिन मैं माने को दीनो मान सब मैं एक रहया पर पूरा सो जापे जिस सतगुर पूरा हर कीर्तन ता को आधार कहो नानक जिस आप दियार पैरो महला पंजमा मोहे दुहागन आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख अर संगल मिट्यो दुख अर संग सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा पिटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूरन सब आसा मिटे अंधेर पै पर गासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद गुर पूरा पूरा प्रसाद जां को प्रगट पै गोपाल ताके दर्शन सदा निहाल सर्ब गुणा ताके बहुत निदान जां को सतगुर दियो नाम जां को पिट्यो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक जो जन प्रभ पाए ता की रेन बिरला को पाए पैरो महला पंजमा चितवत पाप ना आलक आवे बेसुआ पजत किच नह सरमावे सारो दिनस मजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग पुलो संसार आप पुलाया पुलावन हारे राच रहिया बिरथा ब्योहार रहाओ पेखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कोडी रंग लाए अंध ब्योहार बंद मन तावे करने हार ना जीन मैं आवे
करत करत इव ही दुख पाया पूरन होत ना कार जमाया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़फ मुआ ज्यों जल बिन मीना जिसके राखे हुए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया पैरो महला पंजवा आप अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए साच शब्द हृदय मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाहे राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार ले सागर संसार रहाओ जिनको लिखिया हर एहो निदान से जन दरगा पावे मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले निथावे थाओ जुगो जुगंतर एओ तत् सार हर सिमरन साचा विचार जिन लड़ लाए ले सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप तेरे भगत भगतन का आप अपनी महिमा आपे जाप जी जंत सब तेरे हाथ नानक के प्रभ सद ही साथ पैरो महला पंजवा नाम हमारे अंतर जामी नाम हमारे आवे कामी रोम रोम रव्या हर नाम सतगुर पूरे कीनो दान नाम रतन मेरे पंडार अगम अमोला अपर अपार रहाओ नाम हमारे निचल तनी नाम की महिमा सब मैं बनी नाम हमारे पूरा शाह नाम हमारे बेपरवाह नाम हमारे पूजन पाओ नाम हमारे मन का स्वाव नाम ना विसरे संत प्रसाद नाम लैत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निद पाई गुर कृपा ते नाम स्यो बन आई तनवंते सिंह परदान नानक जाके नाम निदान पैरो महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जी प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हों दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा कर कृपा करो प्रभ दात तुमरी उस्तत करो दिन रात रहाओ हम तेरे जंत तू बजावन हारा हम तेरे पेखारी दान दे दातारा तौ प्रसाद रंग रसमाने कट कट अंतर तुम्हें समाने तुमरी कृपा ते जपिए नाओ साध संग तुमरे गुण गाओ तुमरी दया ते हुई दर्द बिनास तुमरी मया ते कमल बिगास हां बलहार जाओ गुरदेव सफर दर्शन जा की निर्मल सेव दया करो ठाकुर प्रभ मेरे गुण गावे नानक नित तेरे पैरो महला पंजवा सब ते ऊच जाका दरबार सदा सदा ताको जो हार ऊचे ते ऊचा जाका थान कोट अगा मिटे हर नाम तिस शरणाई सदा सुख होए कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ जाके कर तब लखे ना जाहे जाका परवासा सब कट माहे प्रगट पया साधु कै संग भगत अरादे अंदिन रंग दिन दे टोट नहीं पंडार खिन मैं थाप उथापन हार जाका हुक्म ना मिटे कोए सिर पातशाह साचा सोए जिसकी ओढ़ तिसे की आसा दुख सुख हमरा तिस ही पासा राख लीनो सब जन का पड़दा नानक तिस की उस्तत करदा पैरो महला पंजवा रोवन हारी रोज बनाया बलन बर्तन को सन बंद चित आया बूझ बैराग करे जे कोए जन्म मरण फिर सोग ना होए बिख्या का सब तंद पसार विरले कीनो नाम अदार रहाओ त्रे बिद माया रही ब्याप जो लपटानो तिस दुख संताप सुख नाही बिना नाम त्याए नाम निदान वटपागी पाए स्वागी स्यों जो मन रिजावे स्वाग उतारे फिर पछतावे मेघ की छाया जैसे बर्तन हार तैसो पर पंच मोह बिकार एक वस्त जे पावे कोए पूरन काज ताही का होए
गुर प्रसाद जिन पाया नाम नानक आया सो परवान पैरो महला पंजवा संत की निंदा जोनी पवना संत की निंदा रोगी करना संत की निंदा दुख सहाम दान दैत निंदक को जाम संत संग करे जो बाद तेरे निंदक नाही किछ साध रहाओ भगत की निंदा कंद चे दावै भगत की निंदा नरक पुंचावै भगत की निंदा गर्भ मैर गलै बद बद भगत की निंदा राज ते टलै निंदक पी गत निंदक की गत कतहु नाही आप बीज आपे ही खाहे चोर जार जुआर ते बुरा अनहोदा पार निंदक सिर तरा पार ब्रह्म के भगत निर्वैर सो निश्चतरै जो पूजै पैर आद पुरख निंदक पोलाया नानक किरत ना जाए मिटाया पैरो महला पंजवा नाम हमारे बिद अरनाद नाम हमारे पूरे काज नाम हमारे पूजा देव नाम हमारे गुर की सेव गुरु पूरे दृढ़यो हर नाम सबते उत्तम हर हर काम रहाओ नाम हमारे मजन इशनान नाम हमारे पूरन नाम हमारे पूरन दान नाम लैत ते सगल पवीत नाम जपत मेरे पाई मीत नाम हमारे सौन संजोग नाम हमारे तृप्त सपोग नाम हमारे सगल आचार नाम हमारे निर्मल व्यवहार जाके मन वस्या प्रभ एक सगल जना की हर हर टेक मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देव नाओ पैरो महला पंजवा निरतन को तुम देवो तना अनेक पाप जाने निर्मल मना सगल मनोरथ पूर्ण काम भगत अपने को देवो नाम सफल सेवा गोपाल राय करण करावन हार स्वामी ताते बिरथा कोई ना जाय रहाओ रोगी का प्रभ कुंडो खंडो रोग दुखिये का मिटावो प्रभ सोग निथावे को तुम थान बैठावो दास अपने को भगति लावो निमाने को प्रभ दे तो मान मूड मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल प्यान का पौ नसै जन अपने कै हर मन बसै पार ब्रह्म प्रभ सुख निदान तत् ज्ञान होर अमृत नाम कर कृपा संत टैले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल मैं हर मन वसै संत मंडल मैं दुरत सब नसै संत मंडल मैं निर्मल रीत संत संग होए एक परीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल मैं जन्म मरण रहै संत मंडल मैं जम किछु ना कहै संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल मैं नाम वखाणी संत मंडल का नेचल आसन संत मंडल मैं पाप बिनासन संत मंडल मैं निर्मल कथा संत संग होमै दुख नसा संत मंडल का नहीं बिनास संत मंडल मैं हर गुणतास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरो महला पंजवा रोग कवन जा रखे आप तिस जन होए ना दुख संताप जिस ऊपर प्रभ कृपा करे तिस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे निकट ना आवे ता के जाम रहाओ जब एहो ना सो तब किने उपाया कवन मूल ते क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रतपाले सब किच जानो तिस कै हाथ प्रभ मेरो अनाथ को नाथ दुख पंजन ताका है नाओ सुख पावे तिस के गुण गाओ सुन स्वामी संतन अरदास जियो प्राण तन तुमरै पास एओ जग तेरा सब तुझै त्याए कर कृपा नानक सुख पाए पैरो महला पंजवा तेरी टेक रहा कल माहे
तेरी टेक तेरे गुण गाहे, तेरी टेक ना पोहै काल, तेरी टेक बिन सै जंजाल, दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रविया साहिब एक रहाओ, तेरी टेक करो आनंद, तेरी टेक जपो गुरमंत, तेरी टेक तरिय पौ सागर, राखन हार पूरा सुख सागर, तेरी टेक नाही पौ कोए, अंतर जामी साचा सोए, तेरी टेक तेरा मन तान, ईहा ऊहा तू दीबान, तेरी टेक तेरा परवासा, सगल त्यावे प्रभ गुणतासा, जप जप आनंद करे तेरे दासा, सिमर नानक साचे गुणतासा, पैरो महला पंजवां, प्रथमे छोड़ी पराई निंदा, उतर गई सब मन की चिंदा, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम बैसनो प्रभ पेख हजूर, ऐसो त्यागी विरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए, हर हर नाम जपै जन सोए, रहाओ ऐं बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम त्याए हर हर हरे, साध जना कै संग निशतरे, बैरी नीत होए समान, सर्ब मैं पूर्ण भगवान, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, गुर पूरै हर नाम दृढ़ाया, कर किरपा जिस राखै आप, सोई भगत जपै नाम जाप, मन प्रगास गुर ते मत लई, मन प्रगास गुर ते मत लई, कहो नानक ता की पूरी पई, पैरो महला पंजवां, सुख नाही बहुते तन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देस कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए, सुख सहज आनंद लहो, साध संगत पाइए वडभागी, गुरमुख हर हर नाम कहो, रहाओ बंदन मात पिता सुत बनता, बंदन कर्म तर्म हो करता, बंदन काटन हार मन वसै, तों सुख पावे निज कर बसै, सब जाचक प्रभ देवनहार, गुण निदान ब्यंत अपार, जिसनो कर्म करे प्रभ अपना, हर हर नाम तिने जन जपना, गुर अपने आगे अरदास, कर किरपा पूरख गुणतास, कहो नानक तुमरी शरणाई, जिस पावे त्यों रखो गुसाई, पैरो महला पंजवां, गुर मिल्या त्यागियो दूजा पाओ, गुरमुख जप्यो हर का नाम, विसरी चिंत नाम रंग लागा, जन्म जन्म का सोया जागा, कर किरपा अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए, रहाओ रोग दोख गुर शब्द निवारे, नाम औखद मन पीतर सारे, गुर पेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत, जन्म मरण की मिट्टी जमतराश, साध संगत ऊद कमल विगास, गुण गावत नेचल विश्राम, पूर्ण होई सगले काम, दुलभ दे आई परवान, सफल होई जप हर हर नाम, कहो नानक प्रभ किरपा करी, सास गिरास जपो हर हरि, पैरो महला पंजवां, सब ते ऊचा जा का नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्ब सुख वसै मन आए, सिमर मना तू साचा सोए, हलत पलत तुमरी गत होए, रहाओ पुरख निरंजन सिर जनहार, जी जंत देवै आहार, कोट खते खिन बख्शन हार, भगत पाए सदा निशतार, साचा तन साची वडियाई, गुर पूरे तेने चल मत पाई, कर किरपा जिस राखन हारा, ता का सगल मिटे अंधियारा, पार ब्रह्म स्यो लागो त्यान, पूर्ण पूर रहयो निर्बान, प्रम्पो मेट मिले गोपाल, नानक को गुर पै दयाल, पैरो महला पंजवां, जिस सिमरत मन होए प्रगास, मिटे कलेश सुख सहज निवास, तिसे प्राप्त जिस प्रभ दे, पूरे गुर की पाई सेव, सर्ब सुखा प्रभ तेरो नाओ, आठ पहर मेरे मन गाओ, रहाओ जो इच्छे सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए,
आवन जान रहे हरत्याए भगत पाए प्रभ की लवलाए बिन से काम क्रोध अहंकार टूटे माया मोह प्यार प्रभ की टेक रहे दिन रात पार ब्रह्म करे जिस दात कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी कर कृपा अपनी सेवा लाए नानक दास तेरी शरणाए पैरो महला पंजमा लाज मरे जो नाम ना लेवे नाम बेहून सुखी क्यों सोवे हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे मूल बिना शाखा कत आहे गुर गोविंद मेरे मन त्याए जन्म जन्म की मैल उतारे बंधन काट हर संग मिलाए रहाओ तीरथ नाए कहां सुच सैल मन को व्यापे हम मैं मैल कोट कर्म बंधन का मूल हर के पजन बिन बिरथा पूल बिन बिरथा पूल बिन खाए बुझे नहीं पूख रोग जाए ता उतरे दुख काम क्रोध लोभ मोहे व्यापिया जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया तन तन साध तन हर नाओ आठ पहर कीर्तन गुण गाओ तन हर भगत तन करने हर शरण नानक प्रभ पुरख अपार पैरो महला पंजवा गुर सुप्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन मैले दीन दयाल सदा कृपाल बिनस गए वाहिगुरु बिनस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने साध संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन पने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिन मैं बिन स्यों महापरेत आठ पहर हर हर जप जाप राखन हार गोविंद गुर आप अपने सेवक को सदा प्रतपारे भगत जना के सास निहारे मानस कीर कहो के तक बात जमते राखे दे कर हाथ निर्मल सोबा निर्मल रीत पार ब्रह्म आया मन चीत कर कृपा गुर दीनो दान नानक पाया नाम निदान पैरो महला पंजमा करण कारण समर्थ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा पै पंजन अविनाशी राय दर्शन देखिए सब दुख जाए जात कत पेखो तेरी शरणा बल बल जाई सतगुर चरना रहाओ पूर्ण काम मिले गुरदेव सब फल दाता निर्मल सेव कर गए लीने अपने दास राम नाम रिद दियो निवास सदा आनंद नाही किछ सोग दुख दर्द नह व्यापे रोग सब किछ तेरा तू करने हार पार ब्रह्म गुर अगम अपार निर्मल सोबा अचरज बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रव्या सोए नानक सब किच प्रभ ते होए पैरो महला पंजमा मन तन राता राम रंग चरने सर्व मनोरथ पूर्ण करने आठ पहर गावत भगवंत सतगुर दीनो पूरा मंत सोवड पागी जिस नाम प्यार तिस कै संग तरे संसार रहाओ सोए ज्ञानी जे सिमरे एक सो तन वंता जिस बुद्ध विवेक सो कल वंता जे सिमरै स्वामी सो पद वंता जे आप पछानी गुर प्रसाद परम पद पाया गुर प्रसाद परम पद पाया गुण गोपाल दिन रहन त्याया टूटे बंधन पूर्ण आसा हर के चरण रिद माहे निवासा कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा सो जन आया प्रभ की शरणा आप पवित पावन सब कीने राम रसायन रसना चीने पैरो महला पंजवा नाम लैत किच बिक ना लागे नाम सुनत जम दुरो पागे नाम लैत सब दुख है नास नाम जपत हर चरण निवास
निर बिगन पगत पज हर हर नाओ रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ हर सिमरत किच चाख ना जो है हर सिमरत दैत देव ना पो है हर सिमरत मोह मान ना बदै हर सिमरत गर्भ जोन ना रुदै हर सिमरन की सगली बेला हर सिमरन बौ माहे अकेला जात अजात जपै जन कोए जो जापै तिसकी गत होए हर का नाम जपियै साध संग हर के नाम का पूरन रंग नानक को प्रभ कृपा तार सास सास हर देहो चितार पैरो महला पंजवां आपे शास्त आपे बेद आपे कटकट जाने आपे कटकट जाने भेद जोत स्वरूप जाकी सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ प्रभ की ओट गहो मन मेरे चरण कमल गुरमुख आराधो दुश्मन दुख ना आवे नेरे रहाओ आपे वन त्रिन त्रिपवन सार जाके सूत परोया संसार आपे शिव शक्ति संजोगी आपे आप निर्बाण आप निर्बाणी आपे पोगी जत कत पे

तू मन मेरे दुख सब बिसारना, अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सोको मनो बसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे, करता तेरे सब किश है जिस देश हो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जनके मन बसिया बाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुरबान कीता गुरु बिटो जिस दिया ये बड़े आईया। कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारू बाजे पंच सबद तित घर सुभागे, घर सुभागे सबद बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद बस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जन को चे नाम हर के लागे। कहे नानक ते सुख हुआ तित घर अनहद बाजे, आनंद सुनो बड़ भागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुने सची बाणी। संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जाने, सुनते पनीत कहते पवित सतगुर रहा पर पूरे। बिनवा

गुर सागर रतने परपूरे अमृत संत चुगे नह दूरे। गुर सागर रतने परपूरे अमृत संत चुगे नह दूरे। हर रस चोग चुगे प्रभ पावै सरबर में हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़िया क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल ना जाए। रहाओ रख रख चरण तरे बेचारी दुबदा छोड़ पै निरंकारी। मुक्त पदार्थ हर रस चाखे आवन जा रहे गुर राखे। सरबर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए। सरबर मैं हंस हंस मैं सागर अकथ कथा गुर बचनी आदर। सुर मंडल एक जोगी बैसे नार न पुरख कहो कहु कैसे। तर पवन जोत रहे लिवलाई सुर नर नाथ सच्चे सरनाई। आनंद आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी। भगत बचल पै काटन हारे होमे मार मिले भगत हारे। अनक जतन कर काल संताए मरण लखाए मंडल में आए। जन्म पदार्थ दुबदा खोवै जन्म पदार्थ दुबदा खोवे। आपन चीनस भ्रम भ्रम रोवे। कह तो पढ़ तो सुन तो एक धीरज धर्म धरनी तर टेक। जात सत संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पते आए। साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द भरम पाव पागे। सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचे साच स्वरूप। साचे निर्मल मैल न लागे गुर के शब्द भरम पाव पागे।